0: tune in to 98.1 FM Radio Eastern every Thursday, 8 to 9 p.m. for Bollywood radio program.
1: Hello, Zindagi.
2: ECG ke jaisi. उठती गिरती संभलती सी जिंदगी हेलो जिंदगी हेलो जिंदगी के सभी लिसनर्स को मेरा यानी रुचि शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सुन रहे हैं रुचि को ह्यूमन स्टेइंग हैप्पी कीपिंग द होप अलाइव हू हा हो एंड दैट्स मी सो हेलो जिंदगी लिसनर्स टुनाइट वी आर ब्रिंगिंग अ स्पेशल इंटरव्यू विद फ्रेड अलाले एम अ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया द पर्सन बिहाइंड द लीडरशिप सर्विस कम्युनिटी कल्चर एंड पर्पस His journey gives us and all of you an opportunity to explore leadership, migration, multicultural Australia, public service, community contribution, resilience, volunteering, African culture, and the person behind the achievements. But before that, as always, we are going to listen to some of the Bollywood, and tonight we will talk more about Africa and India. Their relations. Sitting here in Australia, how do we feel? An Australian Indian interviewing an Australian African. Here we go with the first song.